0: सुरक्षित जीवन जिउन जीवन बीमा जरुरी छ। रिलायबल लाइफ सधैँ भरिलाई।
1: रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 मेगाहर्ज।

0: रेडियो अन्नपूर्ण नेपाल 94 MHz
1: रेडियो पावर घटना विषय को सशक्त संवाद
2: पावर्ड बाय ठुक के साथ व्यापार व्यवसाय करना आर्थिक जोखिम कम

का साथ व्यापार व्यवसाय करना, आर्थिक जोखिम कम करना, विश्वास हामीलाई गर्नुहोस्। युनाइटेड अजोर इन्स्योरेन्स, युनाइटेड बाई ट्रस्ट।